नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेज़बान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalising trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: Prime Minister Modi said India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
1: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
0: Mr. Modi said at the same time India will attract new Swiss investments in important sectors such as biotechnology, life sciences, banking, insurance, food processing and sustainability. The Prime Minister said through these initiatives, the two nations will work together to develop trusted supply chains and reliable solutions for the entire world.
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ

0: भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख अप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए क्रियान्वयन किया गया। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश भी कारिया जी। वो लिखते हैं,
0: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत

0: ठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
1: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
0: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
1: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
0: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
0: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़।

0: के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
0: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
1: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
0: जी।
1: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
0: जी।
1: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
0: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
1: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
0: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
1: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
0: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
1: जी।
0: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
0: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
1: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
1: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
0: जी।
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओ, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओ, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूं और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
1: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
2: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं

0: तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है
1: जी।
0: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है, उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
1: जी।
0: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है। और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है
1: जी।
0: इन विषयों को हम अपनी छठी, सातवीं, आठवीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है। यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए, कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई, तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
1: जी।
0: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
0: हमारी प्रकृति संसाधन है, वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरचना हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारतवर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे
1: जी।
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहां मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज है या हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा, सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी, सातवीं, आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ, लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं, और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं, और बच्चे, आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और साथ साथ ये

0: बताया गया है
1: जी,
0: कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में
1: हम वस्तु विनिमय प्रणाली से जी,
0: हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे, और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी हैं जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए, और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं
1: जी। तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें, और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारे पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको जरूरत लेके जाएं, उनको बताएं,
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ये होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो, और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की, और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ, समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं, या ऑडियो वीडियो बनाऊं, तो ये सारी चीजें अगर उनके मन में आ

0: जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे छठी से आठवीं की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है, और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए, और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज
1: जी। अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी,
1: जी।
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है, और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है, और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6, कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है, और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षा वार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा किया गया है, और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है, पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला, महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा, और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं,
0: क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है, और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में, जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
3: पौधा निकलाया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
3: ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।

0: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
1: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
0: प्रिया बोली,
2: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
0: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
1: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
0: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
2: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब भी तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आकाशवाणी पुदुचेरी, नेरम 6 मणि। திரையிசையின் தொடக்கமாக திருவிளையாடல் ஆரம்பம் திரைப்படத்திற்காக ஹாரிஸ் ராகவேந்திரா பாடியது.

0: மடை திறந்த வெள்ளம் போல உங்கள் செவிகளுக்கு கான மழையை பொழிய வருகிறது சங்கீத வானிலை. அருவியில் கொட்டும் நீர்த்துளிகள் போல சங்கீத வானிலை கொட்டும் பாடல் வரிகள். உங்கள் ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி வானொலியின் முதன்மை அலைவரிசையில் தினமும் இரவு 9:30 சங்கீத வானிலை கேட்க தவறாதீர்.
1: சங்கீத வானில் சந்தோஷம் பாடும் சிங்காரத்தின் குயிலே.
2: ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி நேயர்கள் இனி கேட்கலாம். நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பொது சேவையில் 25 நிறைவு செய்ததை ஒட்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒளிப்பதிவு.
3: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक. इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जनसेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है. जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था. और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए. इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है. तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है. बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है. तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है. तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे. हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल है. मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को. आपका बहुत बहुत स्वागत है.
5: धन्यवाद, नमस्कार.
4: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है.
6: नमस्कार.
4: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा. जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है

0: वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है, और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
1: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी, जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति पे जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
0: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है, और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
2: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो JCB है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
0: जी।
2: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना JCB को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे JCBs को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
0: जी।
2: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे, और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले, ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
0: जी।
2: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है इसको मैंने अपने किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
0: बिल्कुल,
2: तब लोग कह रहे थे कि अरे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
0: बिल्कुल। और प्रसून जी अभी

0: जिस बात की हम जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला एक रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेरा फेरी है उस रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो DBT मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया है, और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर पर बड़ा रोल निभाया है?
1: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन DBT के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है। पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
0: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो UPI ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचें, गांव में, रेड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह UPI के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजेक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
2: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब NPCI ने UPI स्टार्ट किया और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के, और कम से कम 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो UPI की ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक, मैं हमेशा जो मैं MBA की बिटसॉम में MBA की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपने बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप ATM कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने UPI ट्रांजैक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं
0: जी,
2: जितने क्लास में होते हैं या कहीं।

0: हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई गए आप सब्जी लेने गए तो यूपीआई कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले हैं उसके पास खुले नहीं होते हैं, तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पे कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उन्होंने उसको उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेली मेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना हो तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
1: बिल्कुल, यानी
0: एक बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक।
1: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त का आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की, हम यूपीआई की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य है हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज़ को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज़ को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है
2: जी। एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है। और उसमें से जो अपने छोटे एमएसएमईज या उद्यमी, उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो एमएसएमई भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और एमएसएमईज को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे एमएसएमईज अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड, फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है। और इसका रोजमर्रा में भी काफ़ी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है, उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हों, या हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हों। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा। और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है, भारत को जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर। जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे

0: बढ़ाया है।
1: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है। चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स है उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड हैं या इनोवेशन वर्ल्ड हैं वो भी इस पर अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
2: बिल्कुल। अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की। सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं उससे कैसे इससे मदद मिली है?
3: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अवसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से ले आया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इसे अचरज नहीं होता हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
2: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का। 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी

0: कैंप्स नाम से, जिस इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है, तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
1: बहुत ज़्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गाँव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहाँ पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल, उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शन है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माई गॉव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत सराहनीय है, जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं, इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है, और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं, लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतना उनकी पार्टिसिपेशन है।
0: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गाँव में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है। संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में, वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना

0: ना, पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो ये विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
1: नहीं, बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके, उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है, जो सैटेलाइट प्रोग्राम है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
0: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है वो कैसे आने वाले समय में भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनी चला रही हैं। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को, जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को ज्वाइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे MSMEs या हमारे फार्मर्स हैं उनको भी तैयार कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे FTAs भी साइन किए हैं, जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
0: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने ये साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और

0: और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन

0: तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
1: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பொது சேவையில் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை ஒட்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒளிப்பதிவு. இந்நிகழ்ச்சி முன்னதாக இன்றிரவு 7:10 ஆகாஷ்வாணி டெல்லி நிலையம் ஒளிபரப்பியதன் ஒளிப்பதிவு. ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி வானொலி நிலையத்தின் முதன்மை அலைவரிசை. நேரம் 8:35. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமான பாடல் இதோ. வெற்றி விழா திரைப்படத்திற்காக மலேசியா வாசுதேவன் மற்றும் எஸ் ஜானகி பாடியது.

0: ஒளித்தாந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது இன்றைய சங்கீத வானிலை. ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி, நேரம் 10 மணி. நேயர்கள், இனி ரவி வாசரிய அகில் பாரதிய சங்கீத சபா ஹிந்தோல் பென்சே அவர்களின் காயல் இசை கேட்கலாம்.
1: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंसे का शास्त्रीय गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय हिंडोल पेंसे।
1: श्री हिंडोल पेंसे का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत, भक्ति गीत, नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों, धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का सृजन किया है। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपना सफल गायन प्रस्तुत किया है। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री हिंडोल पेंसे से अपने कार्यक्रम का आरंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है कवन ढंग तोरा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बाजे रे मोरी पायल। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजिंक्य गलांडे तथा हारमोनियम पर नारायण दरेकर। लीजिए सुनते हैं राग बिहाग। कलाकार है हिंडोल पेंसे।
2: हिंडोल पेंसे बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस He had his musical training in rich musical environment at home from his father and guru Shri Sadanand Pense. His singing is characterized by the deep commitment to ragadari with a particular emphasis on his traditional form and aesthetic beauty. He has performed at number of prestigious musical and cultural events. He is also known for background music for films, serials and Mahanatya. Hindol Pense begins his vocal recital with Raag Bihag. Vilambit Khayal, Kavana Dhanga Tora is set to Ek Taal and Drut Khayal, Bajere Muri Payal is set to Teen Taal. Accompanied him on Tabla is Ajinkya Galande and on Harmonium Narayan Darekar. Let's listen to Raag Bihag by Hindol Pense.

0: अभी आप राग बिहाग सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन श्री हिंडोल पेंट से राग मधु कौन से कर रहे हैं। मध्य लय ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है देहो दरस मोहराम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है आजा रे आजा पथिकवा।
1: That was राग बिहाग। हिंडोल पेंट से कंक्लूड हिज वोकल रिसाइटल विथ राग मधुकॉन्स। मध्य लय ख्याल देहो दरस मोहराम इज सेट टू झपताल, फॉलोड बाय द्रुत ख्याल आ जा रे पथिकवा इन तीन ताल।

0: ये था राग मधुकौंस। इसी के साथ ही आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें आपने श्री हिंडोल पेंसे का शास्त्रीय गायन सुना। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अजिंक्य गलांडे और हारमोनियम पर श्री नारायण दरेकर। आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was राग मधुकौंस। With this, tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा comes to an end. You have been listening to the classical vocal recital by श्री हिंडोल पेंसे. He was accompanied on tabla by Ajinkya Galande and on harmonium by Narayan Dareker. This program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur and broadcast came to you from Akashwani Delhi.
2: நேர்களே, கேட்ட இந்நிகழ்ச்சி முன்னதாக நேற்றிரவு 10 மணிக்கு ஆகாஷ்வாணி டெல்லி நிலையம் ஒளிபரப்பியதன் ஒளிப்பதிவு. ஆகாஷ்